0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। To everyone tuning

0: रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज आलिया।
1: हाय, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी
2: से। एवरीवन ट्यूनिंग इन टू रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज शाहरुख खान।
3: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: Hi, this is Amitabh Bachchan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: Hi, this is Salman Khan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
13: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
15: आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान Radio Brisbane.
16: है रेडियो 79.1, जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।

हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701 किलोहर्ट्ज़ पर, हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। हमारे स्टूडियोज में ब्रिस्बेन टाइम ठीक एक बज चुकी है। आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सस्री अकाल। स्वागत है आप सभी का, जो लोग आज रेडियो विजवानी सुन रहे हैं, जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। रेडियो विजवानी 24/7 आप सुन सकते हैं। जय शनिवार, मस्ती म्यूजिक है। होप एवरीवन इज एंजॉयिंग अ ब्यूटीफुल वीकेंड आउट देयर।

के साथ साथ अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, आज आपकी जन्मदिन है, कुछ भी है, तो बहुत सारी सी बधाइयां है आप सभी को हमारी तरफ से, रेडियो विजवानी टीम की ओर से। और फिर आज हम आप सभी के लिए एक चलता फिरता प्रोग्राम, एक हरा भरा प्रोग्राम, यानी मस्ती प्रोग्राम, सैटरडे मस्ती म्यूजिक लेकर उपस्थित हुए हैं आज आपके साथ सु। जिंदगी की क्या कहें दोस्तों, चल रहे राही सभी इस जीवन के सफर में, कहीं मिल जाए दोस्त इस जीवन के डगर में। तो जिंदगी भी ना बन जाए मस्तानी हर डगर पे, तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं दोस्तों, मुस्कुराते चले हम सब प्रेम और हम सफर में।

किसके साथ जो हम कहते हैं, अगर अकेला बैठा हुआ इंसान है, अकेला हमेशा नहीं बैठता, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सी परेशानियां होती है। उसके साथ बैठे हो तमाम उलझने जिनमें वो हर पल फंसा रहता है, उसके साथ बैठे वो सारी परेशानियां जो अपनों और पराओं से भी मिलती है, उसके साथ बैठे भावनाएं जिनके साथ हर कोई खेल गया हो। उनके साथ यही बैठी रहती है हर झूठे रिश्ते जो सिर्फ मतलब और स्वार्थ निभाए जाते हैं, और उनके साथ क्या बैठती है दोस्तों, पता है आप सभी को है? उनके साथ ये परेशानियां बैठे कि हर सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां जिनको पूरा करने के लिए वो अपने ख्वाबों को भी बिखेर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अपने आप को भी देखना है, यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। विशिंग एवरीवन अ ब्यूटीफुल वीकेंड आउट देयर।

सुन रहे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज कर रहे पदी पर सलमान खान प्रीति जिंटा के लिए फिल्म खाना में हर दिल जो प्यार करेगा। शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विश्वनिया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 11 मिनट हो गए हैं 1:00 और रेडियो विश्वानी 24/7 आप सुन सकते हैं हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। आज आपके साथ सो।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
0: और देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट भी आ गए हैं, तो उससे पहले एक और गीत सुनते हैं तो हम आपकी रिक्वेस्ट की ओर बढ़ेंगे।

है शनिवार मासी म्यूजिक रेडियो विस्पानी अयम। दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 16 मिनट हो गए हैं एक बजकर, चलते हैं फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं पहली फरमाइश अंबिका की ओर से, जो आज पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रही है और इंडिया से यहाँ पर ब्रिस्बेन में हमें सुन रही है और आप सुनना चाहती है अरिजीत सिंह की आवाज का अगला गीत, हम तेरे बिन जी नहीं सकते।

अरिजीत सिंह की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आज पहली बार हमारे साथ जुड़ी है अंबिका, जो इंडिया से आई है और हमारा प्रोग्राम सुन रही है ग्रीन स्लोप्स में। अंबिका, आपका स्वागत है यहाँ ब्रिस्बेन में और रेडियो ब्रिस्बेन AM से भी। तो चलते हैं दोस्तों, अगला गीत की फरमाइश है हमारे पास। हमेशा की तरह सिडनी से हमारे साथ जुड़े हैं रजिन और मालती प्रसाद। तो चलते हैं ग्रीन एकर सिडनी के रजिन और मालती प्रसाद, देखे आप दोनों के लिए क्या है।

0: और जरा दोस्तों, इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई थी रचन और मालती प्रसाद की ओर से फ्रॉम ग्रीन एका सिडनी।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो।
2: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ ऑगस्ट 2026 एवरीवन इन ऑस्ट्रेलिया विल बी काउंटेड। दिस इंक्लूड्स सिटीजंस, परमानेंट रेजिडेंट्स, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
0: फरमाइश है हमारे पास दोस्तों केडरन पार्क की ओर। हम पढ़ते हैं जोनी और सविता की ओर से। आप दोनों के लिए पेश है अगला गीत, और गीत हमेशा आप रफी साहब की आवाज में सुनते हैं, लेकिन आज इस गीत को आप सुनेंगे एक फीमेल आवाज में।

ब्यूटीफुल सॉन्ग. हमेशा इस गीत को आप सुनते हैं रफी साहब की आवाज में, लेकिन आज एक फीमेल वर्जन में आपने इस गीत को सुना. और इस गीत में हमारे साथ शामिल हुए थे जोनी और सविता फ्रॉम केडरन पार्क. मेनली वेस्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों. फरमाइश है हमारे पास मेनली वेस्ट से लक्ष्मी की ओर से. और लक्ष्मी, आज आप पूजा कर रही है ना, आज सैटरडे को आप थोड़ी सी बिजी है. मेरे ख्याल से आपने कहा कि आज बाबा की पूजा है, लेकिन आज बाबा की बच्चन ने आपके लिए शिव शंभू का एक बहुत प्यारा सा गीत सुनते हैं. लक्ष्मी फ्रॉम मेनली वेस्ट.

0: और इस शिव भजन के गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे लक्ष्मी, जो हमें सुन रही है मेनली वेस्ट में। ऐसे आज वो बाबा की टेंपल जा रही है, मुझे कहा कि कुछ कुकिंग कर रही है, वेरी बिजी फॉर द बाबा टेंपल, लेकिन प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है। थैंक यू सो मच। और हम चलते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट सुनते हैं, उसके बाद हम फिर और आपके लिए जो रिक्वेस्ट बाकी है लेकर जरूर आने वाले हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 2:15 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो 1701 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
6: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
5: अरे वाह, इनका पता बताना.
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: चलते हैं दोस्तों कैलिफोर्निया USA की ओर. और कैलिफोर्निया USA से हमारे पास फरमाइश आई है मैक्स प्रसाद की ओर से. मैक्स, आपके लिए जीमी जीमी.

दोस्तों जिमी जिमी की फरमाइश आई थी हमारे पास कैलिफोर्निया यूएसए से मैक्स प्रसाद की ओर से। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्मानी 1701। जॉइन मी एवरी सैटरडेज फ्रॉम 1 PM और शनिवार मस्ती म्यूजिक। हम चलते हैं दोस्तों वहाँ यूएसए सैक्रामेंटो यूएसए से। हमारे पास फरमाइश ललिता गौतम की ओर से। आपने फरमाइश किया है अमिताभ बच्चन रेखा की फिल्म, किशोर कुमार लता जी की आवाज का वही टाइटल सॉन्ग, ब्यूटिफुल सॉन्ग सिलसिला का गीत। ललिता जी आपकी फरमाइश और पेश है देखा है ख्वाब।

गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

बहुत प्यारे से गीत ब्यूटीफुल सॉन्ग फिल्म सिलसिला का टाइटल सॉन्ग जिसकी फरमाइश करने वाली थी ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। दोस्तों चलते हैं शिकागो की ओर बढ़ते हैं और शिकागो से हमारे पास फरमाइश आई है अमला सिंह की ओर से और अमला सुनना चाहती है रफ़ी साहब का जो गीत है। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब का 31st वर्षी का एक गीत है, 31st वर्षी का जो एक गीत है उसी डेट पर एक गीत मेरे ख्याल से रिलीज हुआ था वटेवा। तो अमला ने इसी गीत की फरमाइश किया है, सुनते कौन सा गीत है।

0: रफिया आशा की आवाज में इस गीत को आपने
1: सुना।
0: इस गीत की फरमाइश करने वाले थे अमला सिंह जो हमें सुन रहे हैं शिकागो में। और जी हाँ, मुझे रियल पता लग गया है कि अमला सिंह ने कहा कि ही पास्ड अवे ऑन July 31st। जी हाँ, रफी साहब की बरसी पर उन्होंने इस गीत को फरमाइश किया। थैंक्स अमला फॉर अपडेटिंग।
2: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: चलते हैं अगले गीत की ओर, बढ़ते हैं दोस्तों मेलबर्न की ओर। हम बढ़ते हैं मेलबर्न से, हमारे पास फरमाइश है शीला सिंह की ओर से और आप सुनना चाहते हैं राज कपूर नरगिस की फिल्म का गीत है ए शाम तन्हाइयां ऐसी।

तो दोस्तों जरूर हमारे पास फरमाइश आई थी मेलबर्न से इस गीत के लिए, जहां मैं सुन रही हैं शीला सिंह, आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान।

शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो बिस्पानी अयम जी। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे से कॉल्स आ रहे हैं, पीपल आर रियली एंजॉयिंग द मस्ती भरी प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग। आगे आगे अभी बहुत कुछ है। तो कितने लोग जो है अपनी नानी से प्यार करते हैं, शायद गीत नानी तेरी मोनी आपने बहुत छोटे पहले सुने होंगे, लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में आप सुनने जा रहे हैं।

सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में पौने दो तीन बजने वाले हैं, साथ हमारा आपका रहेगा ठीक 3 बजे तक है शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विजबानी एम। आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 माइल्स रॉक्स बचपन से आपके साथ सु, और देखिए कौन हमारे साथ शामिल हो रहा है। जी हाँ, हमारे साथ ड्राइव पर है अल्पना फ्रॉम 8 माइल्स प्लेन्स। अल्पना हैव अ नाइस आफ्टरनून ड्राइव। अल्पना चलते हैं आपके लिए अगला गीत सुनते हैं।

तो जरूर दोस्तों, हमारे साथ शामिल हो गई थी अल्पना फ्रॉम 8 Miles Plain, जो इस वक्त हमारे साथ ड्राइव पर है. अल्पना, वंस अगेन हैव अ नाइस आफ्टरनून ड्राइव. आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, 2:45 बजने वाले हमारे स्टूडियोज के घड़ी पर. हम चलते हैं विशाट की ओर, बढ़ते हैं दोस्तों. निशा वहां पर हमारा प्रोग्राम सुन रही है. निशा, चलते हैं आपके फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत.

प्यारा गीत रफी और लता की आवाज में आपने सुना और इसकी फरमाइश आई थी हमारे पास, फरमाइश करने वाले थे निशा फ्रॉम वी शार्ट।

दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 3 ही बचने वाले हैं। साथ हमारा आपका आज यहीं तक था। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात है टुमारो संडे को शाम की सफर पर 2:30 से। एंजॉय योर वीकेंड। नमस्ते, खुदा हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर.
0: इसको हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर. आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हेलो हाय और बड़ा प्यारा सा सैटरडे वेलकम। मैं हूँ इस सफर में आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और आपकी वीकेंड पार्टनर। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट वीकेंड शो सैटरडे डिलाइट। यहाँ रीटू प्रस्थानी 1701 AM पर एक बार फिर से सताक्षी आपके साथ है कुछ ऐसे ही बातों के साथ जो इस वीकेंड को आपके लिए बहुत ही खास बना देंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके लिए वीकेंड और इस वीकेंड का नशा कितना इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारी ज़बरदस्त बातें और हमारा आपका ये ज़बरदस्त वाला साथ भाई बरकरार रहेगा, जारी रहेगा आगे भी। फिलहाल चलिए शो की शुरुआत करते हैं, अपने वीकेंड की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ। कोई डेडलाइन नहीं है और पूरे हफ्ते के इंतज़ार के बाद फाइनली 5 दिनों की भाग दौड़ के बाद ये दिन आया है हम सबकी ज़िंदगी में। तो चलिए सेलिब्रेट करना तो बनता है, इंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

जहाँ फाइनली 5 दिनों के गहरे इंतजार के बाद हमारी और आपकी जिंदगी में आ गया है सैटरडे, यानी हमारा वीकेंड। भाई आज कोई डेडलाइन नहीं है, कोई अलार्म नहीं है, सिर्फ आज आप हैं, आपका मी टाइम है और कुछ अच्छा म्यूजिक है। तो इस वक्त को आप सताक्षी के साथ जीने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं ना। वैसे मी टाइम से याद आया अपना वाला वक्त। अब अपना वाला वक्त क्या होता है? अपना वाला वक्त यानी कि वो वक्त जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो एहसास जो हमें खास लगते हैं, वो बातें जो हमें प्यारी लगती हैं, वो ड्रेस जिसे हम कब से पहनना चाहते हैं लेकिन वो हमारे ऑफिस गेटअप को सूट नहीं करता इसलिए वो अभी भी अलमीरा में रखा है। आज वो सब काम करिए जो करने का, जो चाहने का आपका दिल है। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट, रेडियो प्रिस्वानी 107.01।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: सैटरडे डिलाइट एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। आपके वीकेंड्स को आपके लिए खास और स्पेशल बना रही है सताक्षी, और आपके साथ ये जो वक्त है ये बहुत ही खूबसूरत और इस वक्त बेहतरीन सा हो गया है, और इसी वक्त को चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM।

बात सच सच बताइए, आज सुबह कितने बजे सोकर उठे? वैसे सैटरडे सुबह की ही सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? वो सुबह सुबह जब 8 बजे अलार्म बजता है ना, वो आज भी बजा होगा, और आप जब उसे कहते हैं ना, आज नहीं बेटा, आज सैटरडे है, और वापस से ब्लैंकेट उड़कर आप सो जाते हैं, वो सैटरडे की सबसे खूबसूरत बात है। सैटरडे मतलब नो रश, एक कप कॉफी का हाथ में बिना किसी जल्दबाजी के, और प्यारी सी धूप या फिर बारिश को देखना, यही तो है छोटी सी हमारी सैटरडे की खुशी। जी हाँ, खुशियाँ ज़्यादा ढूंढी नहीं जाती हैं, बस वो आसपास होती हैं, मैं कहती हूँ ना, संभाल लीजिए अपने दिलों में, और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

सैटरडे डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर, आपके साथ सताक्षी है इस शो में और इस साथ की इस वक्त की खूबसूरती को अपने दिलों में समाये हुए चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं एक और ट्रैक के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी 107.01 FM।

स्वीट है तू ब्यूटी तू चाली, मैं दिल में तुझे बसाऊंगा और अपना तुझे बनाऊंगा, लंदन तुझे घुमाऊंगा वह पानी पूरी खिलाऊंगा, हनीमून करके आऊंगा फिर शादी यहाँ बनाऊंगा, मैं रोमियो तू जूलियट, मैं समझ तू मुझको इडियट, अरे हाथ छुड़ा कर चली किधर वो यार मेहरबानी।

0: चाहिए क्या?
1: और को दे दूंगा दिल ये दीवाना मैं मस्ताना, जरा भी चूचा की जो तूने तुझको मैं नहीं छोड़ूंगा। अंदर से मुझ पे मरती है, ऊपर से चूचा करती है, अंदर से मुझ पे मरती है, ऊपर से

0: या भूरी बिल्ली,
1: मैं आफत की पुड़िया,
0: तू भोली भाली गुड़िया,
1: मवाली
0: मैं हीरो,
1: तू पागल,
0: तू जीरो,
1: आवारा,
0: तुम्हारा, समझ गए इशारा।

यू नो फ्राइडे नाइट्स को हम सबके दिमाग में कितने बड़े बड़े प्लान्स होते हैं ना। आज तो ट्रैक पर जाऊंगा, पूरा घर क्लीन कर दूंगी, आज 3 मूवीज देखूंगा। और सैटरडे आते ही हम सब सोफे पर ऐसी जगह बनाते हैं जैसे हम सब सोफे का ही कोई हिस्सा हो। पर पता है क्या, प्लान्स कैंसिल करके घर पर आराम करना भी एक आर्ट है। तो रिलैक्स हो जाइए, चिल करिए और सैटरडे को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आज सिर्फ अपने काम के नहीं, अपने घर के नहीं, आप अपने भी बॉस हैं। सुंदरी सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: डिलाइट आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 एम पर। आपके वीकेंड्स को आपके लिए और भी खास और स्पेशल हम बना रहे हैं। यह बात हो रही है आपकी, सिर्फ आपकी और आपकी, क्योंकि आप पूरे हफ्ते औरों की बात करते हैं और जब ये वीकेंड्स आए हैं तो आपसे आपकी बात होनी तो बनती है। चलिए आपके लिए एक और ट्रैक प्ले करते हैं, इसे भी सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 एम पर।
2: मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं, गोरे को मैं कहूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला, मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो बोलना नहीं, मुझे

0: अब मेरे को नहीं गाने का है, मेरी मर्जी।
1: वीकेंड्स आ गए हैं तो कैलोरीज गिनना बंद कर दीजिए। जी हाँ, आज है ऑफिशियल चीट डे। एक्स्ट्रा चीज पिज्जा, गर्मा गर्म मोमोज या फिर आपका फेवरेट वाला बर्गर। आज डाइट चार्ट को बोलिए कि कल मिलते हैं। कल क्या, ये बोल दीजिए सीधे कि वीकेंड के बाद मिलते हैं, क्योंकि वीकेंड पर ऊपर नीचे तो डाइट हो ही जाती है। और वैसे भी पूरा हफ्ता आप इतना हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, पूरा हफ्ता आप अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखते हैं। आज किचन से जब अच्छी अच्छी खुशबू आए, छोले भटूरे बन जाएं तो मजा आ जाए, है ना। तो बस मतलब मेरा ये है कि यारों दोस्तों के साथ अगर महफिल जमाने का इरादा है तो डाइट को फॉलो मत करने बैठ जाइएगा यार। वो मस्ती तभी वापस आती है जब पहले वाली जिंदगी वापस आ जाए। आइए एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ इसी बात पर, और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट। आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: या सताक्षी के साथ इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर सैटरडे डिलाइट। आपके सैटरडे को ही नहीं, आपके वीकेंड्स को आपके लिए खास बनाने की मेरी कोशिश है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए हर एक पल बहुत ही बेहतरीन हो जाता है अगर वो सिर्फ आपका हो, है ना। तो आपके पल जो आपके साथ हैं उन्हें हम आपके लिए और भी खास बनाएंगे, और आगे लेकर चलते हैं आपको भी एक अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

चाहे तो होल वीक पूरे हफ्ते हम दुनिया के लिए काम करते हैं, बॉस के लिए, क्लाइंट्स के लिए, परिवार के लिए, पर सैटरडे का वक्त आपका अपना होना चाहिए। चाहे वो एक अच्छी सी बुक पढ़ना हो, स्किन केयर मास्क लगाना हो, या फिर बस अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए बालकनी में बैठना हो। एक्चुअली इसे ही कहते हैं सेल्फ केयर। जब तक आप खुद अंदर से रिचार्ज नहीं होंगे, दुनिया को अच्छी एनर्जी कैसे देंगे? सोचा है कभी? आइए मेरी बात पर आप गौर करें। तो उस बीच मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक। एंजॉय करिए और मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट। जी आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 107.01 FM।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: सैटरडे डिलाइट आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ इस वक्त रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। वो वीकेंड्स के पल, वो यारों दोस्तों के पल, वो मी टाइम वाले पल, इस वक्त इन सारे पलों को आप मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया म्यूजिक। जी हाँ, बॉलीवुड के ये गाने आपको एकदम रिफ्रेश कर रहे हैं मैं जानती हूँ, और ऐसा एक गाना भी और आपके लिए आने जा रहा है जो आपकी एनर्जीज को और भी बढ़ा देगा। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

सैटरडे की शुरुआत जो मॉर्निंग से होती है तो फिर रात तक सैटरडे के जलवे रहते हैं। और बात करूं अगर सैटरडे आफ्टरनून्स की तो मतलब ओटीटी बिगेन, जी हाँ, एक से एक वेब सीरीज और मूवीज को एंजॉय करने का टाइम होता है सैटरडे आफ्टरनून। पॉपकॉर्न का बाउल रेडी, ब्लैंकेट ऑन और वॉच लिस्ट स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं आप। अच्छा, जब भी हम एक वेब सीरीज देखने या एक मूवी देखने बैठते हैं ओटीटी पर तो आधा घंटा तो सिर्फ ये डिसाइड करने में निकल जाता है कि देखना क्या है। तो अगर कंफ्यूज्ड हैं तो कोई लाइट हार्टेड कॉमेडी सीरीज देख लीजिए। वैसे हाल ही में मैंने देखी वेलकम टू जंगल, अच्छी पिक्चर है यार, मतलब एंजॉय कर सकते हैं आप अगर आपको कॉमेडी पिक्चरें पसंद है तो। हाँ, बस दिमाग को घर पे ही रखकर देखिएगा, घर ही पर हैं आप इस वक्त तो बस ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अच्छी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, आपको थोड़ा सा हंसाएगी, तो ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरह की कोई भी ऐसी फिल्म जो आपका मूड लाइट करे, बस एक सजेशन मेरा है कि अगर आप ओटीटी देख रहे हैं तो प्लीज कोई एक्शन मूवी मत देखिए यार, वैसे ही दिमाग का भरता रहता है, आप और बना लेंगे, कोई फायदा नहीं है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 107.01 AM पर।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: सदाक्षी के साथ सैटरडे का साथ आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर। जी हाँ, आपके वीकेंड वाले पलों को आपके लिए खास स्पेशल और बेहतरीन बना रही है सदाक्षी, और मेरे और आपके साथ के ये पल आगे भी जारी रहेंगे। हम और आप सेलिब्रेट करते रहेंगे सैटरडे को। सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट और रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सदाक्षी के साथ।

लॉन्ग ड्राइव या लेट नाइट ड्राइव्स, इसका मजा भी ना सैटरडे को ही आता है, बिकॉज संडे होता है अगले दिन और उठने की आपको कोई जल्दी नहीं होती है। बस आप होते हैं, सामने सड़क होती है, आपका फेवरेट म्यूजिक प्ले हो रहा होता है और बगल की सीट पर कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप सारी उम्र ऐसे ही ड्राइव करते हुए बिता देना चाहते हैं। तो बस ये पल जो है, ये जिंदगी का या कहूँ आने वाले हफ्ते के लिए आपको रिचार्ज करने का सबसे खूबसूरत पल बन जाता है। तो कहना आपसे ये है कि अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है कुछ, तो यार प्लान कीजिए, आपका सैटरडे आपका है, घर से निकलिए, एक लंबी ड्राइव पर जाइए, रास्ते में एक बढ़िया सी चाय अगर मिल जाए तो एंजॉय कीजिए, या फिर किसी कॉफी शॉप में बैठकर एक बढ़िया कॉफी पीजिए उसके साथ जिसने पूरे हफ्ते आपके फ्री होने का इंतजार किया है। मौसम का मजा लीजिए यार, मतलब जिंदगी को जीना किसे कहते हैं, इन्हीं सारे लम्हों को तो कहते हैं। और इन्हीं सारे लम्हों के नाम एक और ट्रैक सताक्षी आपके लिए प्ले करेगी, इसे सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट जी हाँ, रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 एम पर।

जो लोग किसी के साथ हैं, उनकी जिंदगी में कोई पार्टनर है, उनके बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन बेचारे वो जो सिंगल है वो बड़े परेशान हो जाते होंगे। वो कहते होंगे कि यार सताक्षी, तुम हमेशा उनके बारे में बात करती हो जिनकी जिंदगी में कोई है, हम क्या करें, हम कैसे मनाएं अपना सैटरडे। तो देखिए, सैटरडे जितना कपल्स का है उतना ही सिंगल्स का भी है। लाउड म्यूजिक बजाइए, रूम में डांस करिए, अपने फेवरेट दोस्तों को कॉल करिए, गेमिंग सेशन शुरू कर दीजिए, सेल्फ लव को फील कीजिए। यार देखिए, सेल्फ लव इज द बेस्ट रोमांस, ठीक है? तो अपने साथ अपनी जिंदगी जी ले सिमरन, जा जी ले। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट, रेडियो प्रिस्वानी 107.01 AM पर।

Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Love me say. वेल, अब वक्त हो गया है आज के सफर को वाइंड अप करने का। जी हाँ, सैटरडे तो जारी है, चालू रहेगा, आप एंजॉय करते रहिए। लेकिन मेरा अब इस वीकेंड यहाँ से जाने का वक्त है, आज के इस प्रोग्राम से इजाजत लेने का वक्त है। लेकिन भाई, आप अपने सैटरडे के साथ साथ अगर अपने संडे को भी बहुत खास बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं फरमाइशी गीतों में। लिख भेजिए मुझे वो गाने जो आपकी पसंद के हैं और हम आपकी फरमाइशों को रेडियो ब्रसवानी पर जरूर लेंगे। तो कल फरमाइशी गीतों के साथ मिलते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदगी को जीते रहिए। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट वीकेंड।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व नेंडी संगम कॉलेज फिजी के वाइस प्रिंसिपल और इंडियन सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन के प्रधान तथा ब्रिस्बेन के संजय सुमेर और अजय सुमेर के पिता तथा चंद्रा सुमेर के पति ब्रिस्बेन के मास्टर राम सुमेर के निधन शुक्रवार 24 जुलाई रात 11:35 पर पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 1 अगस्त सुबह 9:30 से माउंट थॉम्सन मेमोरियल गार्डन इन क्रेमेटोरियम 329 सुमेर और अजय सुमेर के पिता तथा चंद्रा सुमेर के पति ब्रिस्बेन के मास्टर राम सुमेर के निधन शुक्रवार 24 जुलाई रात 11:35 पर पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 1 अगस्त सुबह 9:30 से माउंट थॉम्सन मेमोरियल गार्डन इन क्रेमेटोरियम 329 होलैंड पार्क ब्रिस्बेन में किया जाएगा।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा ले।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: वो सब में मदद कर सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

ओम नमः शिवाय। भक्ति की पावन सरिता में स्नान करने वाले सभी भक्तजनों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। जय श्री राम। राधे राधे। मैं हूँ आपकी भक्ति के सफर की साथी सताक्षी और आध्यात्मिक सफर भक्ति सागर में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर आप इस भक्तिमय सफर को मेरे साथ सुन रहे हैं।

भक्तजनों, सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं, जीवन जीने की एक परम सत्य कला है। जब हम सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारे धरातल पर भटकने वाले मन को एक सच्चा आश्रय मिल जाता है। आइए आज के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर भक्ति सागर सताक्षी के साथ।

जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर। भक्तजनों, महाभारत केवल दो परिवारों के बीच की लड़ाई नहीं थी। महाभारत हर मनुष्य के अंदर रोज चलने वाले विचारों का संघर्ष है। हमारे अंदर का अर्जुन जब मोह और भ्रम में पड़ता है, तब हमें गीता के ज्ञान की जरूरत होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने शत्रुओं में अपने ही सगों को देखा और धनुष धरातल पर रख दिया, तब योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा था, कर्मणि वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम सुनते हैं ये अगला भक्ति गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ।

जनों, महाभारत की बात हो रही है तो महाभारत का हर पात्र हमें एक बड़ा पाठ सिखाता है। महात्मा विदुर ने विदुर नीति में कहा है कि जिस घर में सच्चाई और सीतक धर्म का आदर होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती है। वहीं करण का जीवन हमें बताता है कि सामर्थ्य कितना भी हो, अगर संगति गलत हो तो अंत में परिणाम दुखदायी ही होता है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग हमेशा समाज और धर्म की रक्षा के लिए करें, अहंकार के लिए नहीं।

भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने सभी कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है। मीराबाई ने जब कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, तो उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व ही श्री कृष्ण मय कर दिया था। जब आपका समर्पण सच्चा होता है तो स्वयं ईश्वर आपकी रक्षा के लिए आते हैं। उसी प्रभु को प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं इस अगले भक्ति गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं भक्ति सागर।

भक्ति सागर। जी हाँ, इसी भक्ति के सफर पर आप सताक्षी के साथ चल पड़े हैं और भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है जहाँ हर पल आपको सुकून और शांति मिलती है। आइए दिल को मन को थोड़ा और सुकून से भरते हैं इस अगले भजन के साथ। सुनते रहिए रीजू प्रसाद।

0: करो।
1: हर हर महादेव। भक्ति सागर सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही अनंत है। भगवान भोलेनाथ वैराग्य के प्रतीक हैं। वो हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया के आरक्षण से दूर रहकर अपने अंदर की आत्मा को कैसे पहचाना जाए। शिव महापुराण कहती है कि महादेव को पाने के लिए किसी धूमधाम की जरूरत नहीं है। एक लोटा जल और एक बेल पत्र अगर सच्चे ध्यान से अर्पित कर दिया जाए तो आशुतोष भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं।

सनातन धर्म में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव कहा गया है। ईश्वर के दर्शन से पहले उन माता पिता के चरणों को छूना जरूरी है जिन्होंने हमें इस संसार में जन्म दिया है। श्रवण कुमार की भक्ति हो या भीष्म पितामह का अपने पिता के प्रति किया गया वादा, सनातन संस्कार हमें परिवार, प्रेम और संस्कारों की बुनियाद को मजबूत करना सिखाते हैं। आज के इस दौर में अपने संस्कारों को बचाए रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है।

भक्तजनों अब भक्त हो गया है आज के सफर को वाइंड अप करने का। आशा करती हूँ कि आज इस आध्यात्मिक चिंतन से आपका मन शांत हुआ होगा। अपने धर्म का पालन करिए, सभी से प्रेम करिए और सनातन संस्कारों को आगे बढ़ाइए। मिलती हूँ भक्ति सागर में एक बार फिर से आपके साथ। तब तक के लिए राधे राधे।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में

0: हरे कृष्ण। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। आज हम आपकी सेवा में इस्कॉन संस्था के एक बहुत ही माननीय भक्त प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का गरुड़ पुराण पर आधारित एक इंटरव्यू प्रस्तुत करते हैं। संभावना है कि ये इंटरव्यू 2 हफ्तों तक चलेगा, तो आज हम आपके समक्ष ये पहला भाग प्रस्तुत करते हैं।
1: प्रभु जी, कहा जाता है कि डेथ के कुछ टाइम पहले से साइंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं
2: जी।
1: तकरीबन 4 से 6 महीने पहले तक भी इंसान को साइंस मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रेथ में चेंजेस आ रहे हैं, विजन में चेंजेस आ रहे हैं, अग्नि, अपने शरीर की अग्नि चेंज होने चालू जाती है। ये थोड़ा डिटेल में समझाइए कि डेथ के पहले इंसान किस टाइप के साइंस को एक्सपीरियंस करता है।
2: देखिए, अगर हम शास्त्र के बेसिस पे जाएं तो डेथ के पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं, लाइक यम के दूत जो होते हैं उनका प्रकोप दिखने लगता है, और आपकी जो शैडो फॉर्म होती है, जब हम अपने चलते हैं तो शैडो जो है ना मिस होने लग जाती है। आप बैठेंगे सन के नीचे तो आपको शैडो नहीं दिखेगी, लाइट के अंदर, तो क्योंकि आदमी वृद्ध होता है तो इतना ध्यान नहीं दे पाता, बट जो उसके फैमिली पीपल है इतना हम लोग अपनी शैडो पर ध्यान भी नहीं देते, शैडो मिसिंग होता है। दूसरा, कोई ना कोई डिसीज, क्रोनिक डिसीज व्यक्ति को पकड़ेगा तो वो भी एक चांस होता है, रिवाइव भी कर सकता है, लेकिन क्रोनिक डिसीज ऑल्सो सिम्टम की व्यक्ति के जाने का कोई ना कोई कारण तो बनना चाहिए, तो उसमें से रोग एक कारण है। एक कारण है शैडो का मिस हो जाना, तीसरा कारण है यम के दूतों का दिखना, तो उसको बैड ओमेंस, बुरे स्वप्न आने लग जाएंगे, उसको लगेगा जैसे कोई उसको खींच रहा है, कोई उसको बोल रहा है गेट रेडी, तैयार हो जाओ। तो अभी कुछ एक व्यक्ति का शरीर छोटा था हमारे जान पहचान में, तो उन्होंने बताया कि मुझे यम दूत की जगह विष्णु दूत दिखाई देते हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम विष्णु लोका, और वो कह रहे हैं कि तुम तैयार हो, तुम्हारा समय आ गया है। सो हमने उनको पूछा किस कलर के दिख रहे थे, कैसे थे, तो उन्होंने बोला गोल्डन फॉर्म था, 4 हैंडेड थे, और वो बार बार आकर के बोल रहे तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया, तैयार हो जाओ। तो कोई डिवोशनल लाइफ में था तो उसको इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई डिवोशनल नहीं है तो उसको बताते हैं कि भयानक बड़े 3 यमदूत होते हैं, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, मन से जो कर्म किए, वचन से जो कर्म किए, और मनसा वाचा, वचन से, मन से और कर्म, तीनों में जो कर्म किए हमने, उन तीनों के रेप्लिका प्रतिक्रिया में 3 यमदूत आते हैं टू जस्टिफाई कि भाई इसने मन से जितने किए उसके लिए एक मन का दूत, वचन से वचन का और कर्म से कर्म का, 3 यमदूत आएंगे, एंड देन दे विल विद दंड इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में एक दंड रहेगा, एक हाथ में पाश रहेगा, पाश यानी हंटर, और उस हंटर से वो दे विल बाउंड द सोल विद द बॉडी, और फिर बॉडी से अलग करने के लिए उनके वो इतना सटल लेवल पर होता है कि दैट गोज इनसाइड द सूक्ष्म शरीर, उस सोल को, सटल बॉडी को पकड़ेगा। अब जो आत्मा उसका साइज बताया गया है श्वेताक्षर उपनिषद में, बाल अग्रशत भागस्य शतदा कल्पितस्य च 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, इतनी छोटी आत्मा का साइज श्वेताक्षर उपनिषद में बताया गया है।
1: आत्मा का साइज भी होता है,
2: बाल के 10,000वां हिस्सा, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, माइक्रोब से भी छोटा है। जैसे क्या भगवान गीता में कहते हैं, ममेव अंशः जीव लोके जीव भूत सनातना, ऑल दी सोल्स इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो किसी भी पशु में हो या इंसान में हो, मेड अप ऑफ माइंड, ममेव अंशः। अब कहते हैं ना पेरेंट्स से जो बच्चे निकलते हैं, पेरेंट्स जैसे उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो भगवान से निकलने वाले जितनी भी जीवात्मा है, भगवान को बोला गया सत चिदानंद विग्रह, सिमिलरली जितनी सोल है वो भी सत चित और आनंद है, तो आत्मा सत चित और आनंद की बनी, 3 तत्व,
1: सारी आत्माएं,
2: सारी वर्ल्ड की जितनी भी आत्मा है, चीटी से लेकर के ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ऊपर स्वर्ग लोग, नीचे के लोग, सब सत चित आनंद, एनी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, सो एवरी सोल इज, सत मीन्स एटर्नल, वो कभी मरती नहीं, चित मीन्स ऑल नॉलेजेबल, यू जस्ट नीड टू रिवाइव द नॉलेज, इट्स ऑलरेडी देयर इन द बॉडी, एंड एटर्नल ब्लिसफुल, ब्लिसफुल है आनंद, बोलते ना हे आनंद आत्मा, तो आनंद आत्मा में आनंद है ना, लेकिन वो आनंद आत्मा क्योंकि शरीर से अपना अनुभव कर रही है, सोच रही मैं ये शरीर हूँ, इसलिए वो दुख के अंदर आ रही है,
1: तो आनंद एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही जो, तो अगर तो वो जैसे ही डिस्कनेक्ट आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो वो आनंद की तरह
2: आनंद आ जाए। अभी प्रश्न उठता है कि आत्मा का कोई स्वरूप होता है, कि आत्मा निराकार स्वरूप की होती है, उसका कोई फॉर्म होता है, तो शास्त्र प्रश्न करते हैं, हाथ पहले बना या दस्ताने पहले बने, तो बोलते हैं कि भाई हाथ पहले बना, दस्ताना बाद में बना। तो शरीर तो कपड़े के समान है ना, तो ऊपर एक कवरिंग दिया गया, तो पहले सोल बनी, उसके ऊपर के लिए वस्त्र दिया गया। माँ की गर्भ में भी कहते हैं जब गर्भ धारण हो गया, यानी जीवात्मा पहले आई और फिर वो ग्रो करना शुरू करी, एक महीने में उसके यह शरीर बना, 9 महीने में पूर्ण शरीर बना। तो चेतना जो आई कि मैं गर्भवती हो गई, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया, इट मींस कि उसके अंदर एक जीवात्मा ने प्रवेश किया। अगर जीवात्मा ना आए, कोई लिविंग बॉडी ना आए, तो फिर इसका मतलब वो गर्भ धारण ही नहीं कर सकती है। और गर्भ धारण हुआ मींस कि जीवात्मा, यानी जीवात्मा पहले आई, अब उसके ऊपर का आवरण बनना शुरू हो रहा है। तो जो उंगलियां 5 हैं, तो दस्ताना भी वैसे ही बनेगा। तो जिस तरह के हमारे हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, नाक हैं, ऐसा ही स्वरूप आत्मा का है। तो सोल के ऊपर एक सटल फॉर्म होती है, माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो, दैट इज सूक्ष्म शरीर, और उसके ऊपर फिर आवरण बनता है पंच भौतिक शरीर का। तो वो किस फॉर्म में बनेगा? उसी फॉर्म में बनेगा जिस फॉर्म की वो बॉडी है। भाई जैसे मैं अपनी दस्ताना पहनता हूं तो साइज चेक करता हूं, तो आत्मा के ऊपर वैसे ही आवरण बनाया जाएगा जैसी आत्मा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा के ऊपर आवरण अगर मनुष्य का दिया गया, तो क्या शेर के अंदर आवरण शेर का होता है?
1: Exactly.
2: इसका उत्तर यह है, शास्त्र कहते हैं कि जैसे कोई आदमी एयरप्लेन में फ्लाई करता है, पायलट है वो, उसके कुछ नॉर्म्स हैं बिफोर फ्लाई, कि आपको ड्रिंक नहीं करना है, ये नहीं करना है, अदरवाइज आप जर्नी नहीं कर सकते हैं। वो लेकिन नियम तोड़ता है, तो नियम तोड़ने के बाद वो पायलट तो है, वो ट्रेन पायलट भी, सब कुछ आता है, बट ही इज बाउंड टू द ग्राउंड ड्यूटी पायलट। उसको ग्राउंड ड्यूटी बना दो, पायलट की जगह ग्राउंड फ्लाइंग काट दो उसका। अब ही इज ड्राइविंग अ कार ग्राउंड ड्यूटी, बट ही इज अ पायलट, ही वॉन्ट्स टू फ्लाई बट ही कांट फ्लाई। सिमिलरली जो आत्मा है, वह भगवान चाहते हैं कि वह भजन करके मेरे धाम को आए, लेकिन क्योंकि आत्मा अपने बुरे कर्मों के कारण उस पशु शरीर में फंस जाती, अंदर से चाहती तो है लेकिन वो फंस गई है। शूज मेरा 6 नंबर पहनता हूं तो 6 मिलना चाहिए, लेकिन मुझे 8 नंबर का पहना दे, पहन तो लूंगा, अनकंफर्टेबल रहूंगा। तो सोल अनकंफर्टेबल रहती है पशु शरीर के अंदर। जब वो मनुष्य शरीर में आती है, तब उसको क्रिया करना, भजन करना, मेडिटेट करना उसको मौका मिलता है, वरना पशु शरीर में कैसे करे? तो उसकी जर्नी रुकी हुई है।
1: अभी हम बात कर रहे थे प्रभु जी कि किस टाइप के साइंस इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है जो मरने वाला हो। क्वेश्चन ये आता है कि अगर तो मेरी अननेचुरल डेथ हो रही है, तो भी क्या मैं ये साइंस एक्सपीरियंस करूंगी? नेचुरल डेथ हो रही है तो ठीक है, साइंस मुझे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जैसे अभी आपने कहा, अननेचुरल डेथ में भी होती है?
2: देखिए, अननेचुरल तो कोई डेथ होती नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइडल डेथ। जब जन्म हुआ उसके साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित कर दी गई कि इस दिन इसकी मृत्यु होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग डेट का एक्सपायरी डेट कंपनी लगा कर देती है। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो खाने का प्रोडक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही फिक्स्ड होती है कि इतने काल बाद इसको मरना है, एक्सपायरी डेट होती है। अब फर्क इतना होता है कि हमको अनुभव नहीं होता कि हमारी नेचुरल होनी है, कि हमारी हॉस्पिटल में होनी है, कि हमारी एक्सीडेंट में होनी है, क्या होना है। सिर्फ एक डेथ है जिसको कहते हैं सुसाइडल डेथ, जो कि निश्चित नहीं होती है। सुसाइडल डेथ इज अ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्री विल। भगवान ने हर जीवात्मा को एक सूक्ष्म आजादी दी है, फ्री विल। फ्री विल से वो क्या कर सकता है? जब इंस्टिंक्ट आती है कि मुझे समाप्त करना है शरीर को, अगर वो अध्यात्म का पालन करे, स्पिरिचुअलिटी का पालन करे, तो वो उससे बच सकता है। लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का पालन ना करके अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है, अपने माइंड को फॉलो करता है, तो अगर मान लो उसको 80 साल जीना था और उसने 40 में फ्रस्ट्रेट होकर अपने को फांसी लगा दी, तो बाकी के 40 ईयर्स ही विल बी लाइक अ घोस्ट, उसको शरीर नहीं मिलेगा। कई लोग बोलते हैं, हम अगर बोलते हैं अंतकाल में राम का नाम लेके, कृष्ण नाम लेके मर जाए तो हमारे को अच्छा धाम मिलता है, तो क्या राम बोल के सुसाइड कर ले तो बचेंगे? तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे करने से भी आप घोस्ट बनोगे, स्पिरिचुअल घोस्ट बनोगे। हाँ, एंड मैनी स्पिरिचुअल पीपल एक्सपीरियंस टेम्पल एरियाज में और धामों के अंदर भी घोस्ट होते हैं। एक माता जी के अंदर एक घोस्ट आया और उनकी आवाज चेंज हुई और उन्होंने बोला कि मुझे लेकर चलो मायापुर धाम कलकत्ता के पास, नवदीप धाम। तो वो बोलती, हमें तो मालूम ही नहीं है कौन सा धाम है। उनकी फैमिली बोलते मुझे लेके चलो, नवदीप लेके चलो। तो जो वीक सोल्स होती हैं, जो कि लोग घबराते बहुत हैं, जो डरपोक होते हैं या फियरफुल होते हैं, तो उन लोगों को देखते कि ये तो वीक है, इसके अंदर बॉडी में जाकर इससे अपने काम करवा सकती हूँ। तो उसकी जो लॉस्ट डिजायर्स होती हैं वो इसके द्वारा पूरी करवाएंगे। तो वो लॉस्ट डिजायर पूरी कराने के लिए आया तो बोले मुझे मायापुर लेके चलो, मैं जब पहले जिस शरीर में थी मैं मायापुर जा नहीं पाई। तो उन्होंने फिर भक्तों से पूछा, इस्कॉन डिवोटीज से पूछा कि मायापुर नाम की कोई जगह? बोले अरे इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, 122 कंट्री साथ रहती हैं, हमारा कलकत्ता में 100 एकर्स में इतना बड़ा गैप वो है, फार्म हाउस है, इतना बड़ा मंदिर। कह रहे अच्छा ऐसा कुछ है? बोले आप जाइए। वो जैसे ही पहुंचे वो लेडी की आवाज वापस फीमेल वॉइस हो गई, वो जो मेल वॉइस हो गई थी, ही वेंट आउट। तो स्पिरिचुअल घोस्ट भी होते हैं, जिनको आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए शरीर छोड़ दिए थे और इस बनार से किसी के ओवर पार करके अपना धाम ट्रेवल किया उन्होंने। जैसे तीन खंड में गरुड़ पुराण बटा है तो उसका जो मध्य भाग है उसको प्रेत खंड कहते हैं। प्रेत खंड यानी शरीर त्यागने के बाद जो आत्मा है वो प्रेत है। अब उसे भूत प्रेत कहे तो भूत का मतलब क्या, जो भूतपूर्व में शरीर में था और आज शरीर में नहीं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व भूतकाल में अपनी गद्दी पे था अब नहीं है, शरीर में था तो इंसान था, शरीर में नहीं है तो प्रेत है, तो उसका नाम ही प्रेत खंड। प्रेत कोई आक्रमण करने वाला प्रेत नहीं होता, प्रेत मीन्स जो जिसका शरीर नहीं है, मृत्यु हो गई तो 13 दिन तक वो प्रेत ही है ना, घर के अंदर रहता है, यात्रा चल रही है, सब प्रेत ही है वो।
1: प्रभु जी, आज गरुड़ पुराण के बारे में हम आपसे डिटेल में समझना चाहते हैं। आपने मुझसे कहा कि गरुड़ पुराण के तीन खंड है।
2: गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोक है और इसमें चैप्टर्स हैं 275 चैप्टर्स, हर पुराण में अध्याय है तो गरुड़ पुराण में 275 अध्याय है, तो तीन खंड में इसको विभाजित किया है। तो पहला इसका है आचार खंड। आचार खंड यानी आचरण बताते हैं कि कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को भगवान का भक्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी स्टोरीज उसमें आचार खंड में आती हैं। मध्य भाग इसका जो है उसका नाम है प्रेत खंड, उसमें शमशान की यात्रा, मृत्यु, मृत्यु के उपरांत फिर उसके डिसीजन, उसके कर्म, कौन से कर्म पर कैसा योनि, इसके बारे में चर्चा करी गई है। एंड देन थर्ड पार्ट इज ब्रह्म खंड। तो जो प्रेत खंड है उसको धर्म खंड भी कहते हैं क्योंकि धर्म बताया गया है, मृत्यु के उपरांत का धर्म और मृत्यु में शरीर में जीते जी का धर्म क्या है, कि आदमी को गौ दान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्रिया करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है, धार्मिक नहीं है तो उसको धार्मिक को अलग फल मिल रहे हैं, अधार्मिक को अलग फल मिल रहे, दोनों के डिस्टिंग्विशन किया गया कि कैसा कैसा फल मिलेगा, इसलिए स्वर्ग नर्क, और स्वर्ग नर्क के अलावा है वैकुंठ, जहां जाने के बाद व्यक्ति को वापिस संसार में नहीं आना पड़ता, स्वर्ग नर्क से वापसी है लेकिन वैकुंठ चला गया तो वापसी नहीं है उसकी, उसका लाइफ साइकिल पूरा हो गया। तो जो कहते हैं ना, मेक इट योर लास्ट बर्थ मींस डू सम कर्मा, यू शुड नॉट कम बैक अगेन, वरना जन्म मृत्यु चक्र में पुनः पुनः कभी पशु में, फिर धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट से मनुष्य बने, फिर मनुष्य बन के फिर अगेन रिसाइकल, फिर दोबारा से साइकिल,
1: रिसाइकल भी होता है।
2: हाँ, वापिस, वापिस, वापिस।
1: क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो लगा कि
2: मनुष्य बनने के बाद वापिस नहीं जाएंगे, जाएंगे।
1: अच्छा, मनुष्य बनने के बाद वापिस हम पशु भाव में जा सकते हैं?
2: जा सकते हैं, इसका तो भागवत के अंदर इतना बड़ा स्टोरी है कि एक राजा थे जिनके नाम पर पूरी पृथ्वी को भारत देश कहा गया,
1: राइट।
2: तो भरत महाराज अपना सब कुछ त्याग कर दिए, जो 50 वो चले गए थे जंगल में पुलस ऋषि आश्रम पर, गंडकी नदी नेपाल के पास, तो वहां वो जप करते थे, ध्यान करते थे और बहुत उत्कृष्ट थे, जिसने अपने घर महल द्वार सब छोड़ दिया, यानी अच्छा वैराग्य स्थिति थी, और 6 घंटे 7 घंटे एक जगह बैठ के जप करते थे, ध्यान में रहते थे। उन्होंने एक दिन देखा नदी के किनारे, गंडकी नदी पे एक शेर है, वो किसी हिरणी, वो गर्भवती है और वो भाग रही और शेर उसको पीछे खाने के लिए दौड़ रहा है, तो उसने नदी को देखकर जंप करी, जब जंप करी तो हवा में ही उसका जो बच्चा था हिरणी का वो डिलीवर हो गया और वो नदी के अंदर गिरा और बहाव के साथ आने लगा नीचे बहते हुए। हिरणी तो उस पार जंप कर गई लेकिन शेर जो था वो बच्चे को खाने के लिए आने लगा। तो राजा भरत के मन में, क्षत्रिय थे तो ही वॉज वेरी फाइटर, तो उन्होंने डंडे से उससे शेर को भगा दिया और उस बच्चे को बचा के ले आए, ऐसे कंपैशन आदमी बचा लेता है। लेकिन अब उनकी अटैचमेंट हो गई उस हिरण के साथ, हमें अपने घर में डॉग्स पैरट्स लगते हैं लोग, एक अटैचमेंट होती है, वो अटैचमेंट शुरू हो गई और जब करे तो वो ऐसे सिर पे हाथ लगाते रहे उसके, वो छोटा सा घूमता रहा हिरण का बच्चा उनकी कुटिया के अंदर। कुछ वर्ष बीतने के बाद एक दिन उसके पाँव में चोट लग गई तो उनको बड़ा दर्द होने लगा, अब उनको पता भी चल रहा है कि मैं इतना अटैच क्यों हो रहा हूँ इसके साथ में, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। अब उनको क्या करना चाहिए था, उनको अपने गुरु के पास जाना चाहिए था और उनको चर्चा करनी चाहिए थी, बट बिकॉज ही डिड नॉट वेंट टू हिज गुरु अगेन, वो अपने आप ही डील करते रहे। कई बार होता है ना, हमने मेडिटेशन सीख लिया, हम स्ट्रगल कर रहे हैं बट हम अपने आप से डील करते हैं कि हमें आता तो है ही है, बट वी शुड गो बैक एंड डिस्कस कि आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल ऑफ माय स्पिरिचुअल लाइफ। वो स्ट्रगल करते रहे, उनकी डेथ हुई तो उस समय वो हिरण कहीं और था और वो बुलाते रहे कि हिरण तुम कहाँ हो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, एक बार अपना दर्शन तो दे दो। तो गीता में लिखा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम ताम ताम एवहति कौन्तुए सदा तद भाव भावितः, भगवत गीता 8th chapter 6th verse, 8वें अध्याय के 6 में लिखा है, यम यम वापी स्मरण भावम, जब शरीर छूट रहा होगा और तुम जो स्मरण कर लोगे That becomes your tam tam ev hi kontuve, कुंती पुत्र तुम्हें वही शरीर मिलने वाला।
1: यो तो आपका last thought determines your next life.
2: जैसे फोटोग्राफ होती है, पिक्चर खींचते श्लोका जी रेडी हुई, अपना सब कुछ किया और जब क्लिक फोटो का टाइम आया तो आपकी नाक पर मक्खी आके बैठ गई तो आपने ऐसे कर दिया, तो जो पिक्चर आएगा आप कहेंगे अरे मैडम टेढ़ा हो गया, नाक पे मक्खी आ गई थी। सो आपकी प्रिपरेशन ने हेल्प नहीं किया, आपके लास्ट एक्शन ने हेल्प किया। तो पूरी लाइफ की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डिपेंड ऑन द लास्ट में आप करेंगे क्या। कहते हैं जन्म जन्म ऋषि तप करही अंत राम कहे आवत नहीं, पूरा जीवन तपस्या करे अंत में राम नहीं निकला तो क्या फायदा हुआ। द होल प्रिपरेशन इज फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन विच इज डेथ, मृत्यु ही हमारा निर्णय करेगा असली होने का क्या है। इसीलिए आत्माएं प्रेत बन रही हैं, वापस संसार में आ रही हैं, पुनर्जन्म हो रहे हैं।
1: लग रहा है बहुत ज्यादा पुनर्जन्म हो रहा है,
2: और इसका मेन कारण तो मैं नॉनवेज बताता हूँ।
1: अच्छा प्रभु जी, लोग तंत्र के जो मार्ग में होते हैं वो तो नॉनवेज खाते हैं, वो तो उनकी साधना का ही पार्ट है।
2: साधना जो है वो तीन गुणों में होती है,
1: अच्छा
2: तमोगुण रजोगुण एंड सतोगुण। तमोगुणी साधना जो है वो आपको साधक बनाएगी लेकिन मन को शांत नहीं करेगी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत होने के लिए निष्काम होना पड़ेगा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, ना ही मैं गो फेमस बनना चाहता हूँ, ना मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ कि दुनिया मेरा पूजन करे, ना मैं भोगना चाहता हूँ, ना बड़े आश्रम चाहता हूँ, मैं तो निष्काम हूँ, जो ठाकुर जी दे दे उसके सहारे। जाय विधि राखे राम ताहे विधि रही, तो इति शांत मन। तो हम उनकी क्रिया को हम विरोध नहीं कर रहे, कोई भी सब अपने अपने लेवल पर लगे हुए हैं, पर वो तमोगुणी साधना है।
1: पर बाकी साधनाओं में भी तो आपको लिबरेशन अचीव हो सकती है ना, तो क्या आप कह रहे हैं कि इन साधनों में रीबर्थ का चांस ज्यादा है?
2: रीबर्थ का चांस ज्यादा है, क्योंकि जैसे बताया ना कि नॉनवेज खाने से क्या होता है, अमेरिकन रिसर्च कहती है कि जब आप किसी को काटते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है और उसके अंदर जो पेन होता है, जैसे आपने किसी मुर्गी को काटा, हलाल किया, झटका जो भी किया, जब आप उसे तो उसके अंदर एक फियरनेस होती है, दैट फियरनेस कम्स टू द पर्सन हु इज ईटिंग द फ्लैश, फियर। सो सब फियर स्टेट के अंदर रहते हैं, क्यों रहते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति को ध्रुव करना है उसके लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। लोग बोलते पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, अब प्रकृति का नियम कहता है द लॉ ऑफ नेचर, अगर आज मैंने एक को मारा तो उसको मारने से पहले आप पूछिएगा किसी नॉन वेजिटेरियन से भी, जो काटता हो उसको एक शब्द बोलना होता है मांसह, जो मांस कहते हैं ना, मांस खा रहे मांस खा रहे, मांस नहीं होता उसका शब्द है मांसह। मांसह शब्द संस्कृत से आया है, इसका अर्थ है मांसा, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम मेरे साथ करना। तो अगर मैं बकरे को आज काट रहा हूं तो मैं बकरे को बोल रहा हूं, उसके कान में बोलना होता है बिफोर बलि देने से पहले मांसा, आज मैं तुम्हें काट रहा हूं कल तुम मुझे काटना।
1: अच्छा,
2: पर लोगों को संस्कृत का मीनिंग नहीं पता तो इसलिए वो सिर्फ एक रिचुअल समझ करके मांसा तिलक लगा काट दिया। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अगर 100 मुर्गे खाए तो 100 मुर्गे पशु से इंसान बने, क्योंकि जो जैसा कर रहा है वो इंसान को देख के शरीर छोड़ रहा है, तो अंतकाल का नियम उस पर भी लग गया और वो क्या बन गया, मनुष्य बन गया।
1: जो बुचर है वो उसकी बात,
2: हाँ जो बुचर है
1: और जो खाते हैं, जो बुचरिंग नहीं कर रहे हैं,
2: लेकिन उनके अंदर फियर तो आ ही रहा है ना, चेतना तो उनकी खराब हो रही है ना। जब हमने बोल दिया कि सारी सोल, भगवान ने कहा ममेव अंश, मेरे ही अंश है, जब भगवान ने कह दिया, चाहे वो कोई भी हो चींटी से लेकर के, सर्व योनिषु कौन्तुए अहम बीज पदा पिता, कृष्ण गीता में कहा जितनी भी योनियां हैं, सर्व योनी सर्व योनिषु कौन्तुए अहम बीज पदा पिता, मैं सबका पिता हूं, आई एम द फादर सीड गिविंग फादर। तो जब पिता बता रहा है कि मेरे पुत्र हैं, तो एक पुत्र दूसरे पुत्र को खा रहा है कि वो बोल नहीं सकता, गूंगा है, तो पाप तो लग ही रहा है। एक व्यक्ति ने अगर 100 मुर्गे खाए तो 100 मनुष्य बन गए और मनुष्य एक मुर्गा बना। लॉ ऑफ नेचर जैसा तुम कर रहे हो, तो जब पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही, नॉन वेजिटेरियन से बन रही है ना।
1: जब मृत्यु होती है तो कहते हैं सोल के 9 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं बॉडी।
2: जी जी जी।
1: ये 9 एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं और इन एग्जिट पॉइंट्स से निकलने का सिग्निफिकेंस और आउटकम क्या होता है?
2: तो हमारे शरीर में 9 द्वार है, 9 द्वारों का पिंजरा रहता पंछी कौन, 9 द्वारों का पिंजरा रहता पंछी कौन, रहे तो अचरज है उड़े तो अचरज कौन, एक कवि ने कहा है। पिंजरा बनाया आपने, उसमें 9 गेट लगा दिए और सब खुले हुए हैं, तो अगर उसमें पंछी रह रहा है ये अचरज की बात है या उड़ गया तो अचरज की बात है? तो आश्चर्य क्या है, रहता
1: तो
2: है,
1: रह
2: रहा है तो आश्चर्य, उड़ गया तो आश्चर्य क्या, उड़ जाना क्योंकि 9 द्वार खुले हुए। तो हमारी मृत्यु आश्चर्य नहीं है, हमारा जीवन आश्चर्य है। आज भी जिंदा हो, 9 द्वार है और उसमें से आत्मा निकल नहीं रही है, ये आश्चर्य की बात है। 2 आंखें, 2 नाक के नतने, 4 एक मुंह, 5 2 कान, 7 एक मूत्र विसर्जन, 1 मल विसर्जन, 7 2 नीचे 7 ऊपर, कितने द्वार हो गए, 9। दीज आर द 9 गेट्स। ब्रह्मरंध्र इज अ 10th विच इज अ क्लोज गेट, इट्स ओनली फॉर द योगीज एंड ब्रह्म योगीज, जो अपने ब्रह्मरंध्र को कर सकते हैं, ध्यानांतरण कर सकते हैं, परंतु फॉर अ जनरल क्राउड दोज आर नॉट योगीज, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग ओनली फॉर योगीज, वी आर टॉकिंग फॉर जनरल पीपल। सो अगर आदमी की डेथ टाइम पर बहुत जोर का यूरिन हो गया, पूरा बेड गीला हो गया, समझ लीजिए कि
1: मूलधारा से निकले,
2: मूलधारा
1: सबसे लोएस्ट फॉर्म,
2: लोएस्ट फॉर्म
1: निचला बनेगा ये
2: निचला व्यक्ति है, वो तो फिर जाहिर है नरक में जा रहा है वो।
1: अच्छा 100%
2: 100% नीचे वाले पार्ट और नरक दोनों, मूलधारा जो है और मल स्थान, वो दोनों मुख खुला रह गया।
1: हाँ
2: बंद करोगे फिर भी बंद नहीं होगा, कपड़ा बांध के बंद करना पड़े, बंद नहीं होता, मुख से निकली आत्मा, कान से मैल निकलेगा, नाक से निकली नाक से मैल निकलेगा, आंख से आत्मा निकली तो आंखें बाहर को ऐसे बड़ी बड़ी आंखों ऐसे हो जाती है, फिर बंद करना पड़े दबा के फिर भी बंद नहीं होती है, इसको ऐसे क्लिप करना पड़ता है, बंद नहीं होती आंखें, लोअर नहीं होती, आंखें फट जाती हैं, और ब्रह्मरंध्र में तो फिर ये स्थान से क्रैक होता है। तो अगर ऊपर के स्थानों में मुख और नेत्र, इसका मतलब है कि आत्मा स्पिरिचुअल थी।
1: ओके।
2: नाक और कान यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति, नीचे के द्वार नरक लोक की प्राप्ति। तो ये द्वारों से ही पता चल जाता है कि आत्मा का कहां पर गति हुई है, क्योंकि जो भजन करता है उसके मल मूत्र से नहीं जाएगी आत्मा, मुख से निकलेगा, उसे भगवान का नाम मिल रहा है और आंखों से उसने भगवान का दर्शन किया है, तो आंखों से निकलेगी, वो प्रभु को देख करके छोड़ना चाह रहा है, ये भगवत धाम जाने वाली। और जो स्वर्ग जा रही है उसके कान और नाक, मैल निकला यहाँ पर पोंछ दिया, क्लीन कर दिया, फिर मेकअप करके आत्मा को तैयार करके मतलब शरीर को ले गए क्रिमिनेशन के लिए। बट एंड टाइम पे पूछिए या परिवार में कोई छूट रही हो तो देख लीजिए, या आप तो आप कहते हैं आप क्रिमिनेशन ग्राउंड जाती है, पूछा करिए कि भैया कैसे हुई थी। तो मैंने भी बहुत जा करके रिसर्च करके एनालिसिस किया है, कैसे पता करे कौन स्वर्ग गया कौन नर गया, उसकी क्रिया से पता चलता है।
1: अच्छा
2: और भी चीजें होती हैं, जो व्यक्ति शरीर छोड़ा उसकी लोग बुराई कर रहे हैं, जैसे जो आता है ना क्राउड आता है, आपको आप चुप रहकर बस मौन रहकर सुनिए कान से कि क्या बातें चल रही है, बोलेंगे अरे हमारा पैसा ले गया, बोला था कल दे दूंगा, देखो नसीब में क्या लिखा था, अरे कल ही दे देता तो मेरा क्लीन हो जाता, अब बेटे बच्चे देंगे नहीं, यानी आदमी नर्क गया है, इसने इतने लोन ले रखे लोगों को डिस्टर्ब करके गया है। एक आदमी की सुनिए, कह रहे हैं जी अच्छे आदमी थे, जहां देखो वहां भंडारा, जहां देखो वहां मंदिरों में दान पुण्य इतना किया, ओहो बड़े कृपालु आदमी, बड़े दयालु आदमी, स्वर्ग गया। स्पिरिचुअलिस्ट लोग खड़े हुए हैं, आए कह रहे हैं अरे हमको कीर्तन दिया, मैं इतना डिस्टर्ब था, मेरे घर आए कभी किसी चीज की डिजायर नहीं करी, हमेशा इतने सिंपल हार्ट रहे, हमेशा लोगों को बोले तुम क्रिया करो, तुम भजन करो, तुम ये करो, तुम साधना करो, तुम ग्रंथ पढ़ो, हम लोगों को गीता सिखाई, हम तो उनको अपना गुरु मानते थे, ऐसे बहुत लोग बातें कर रहे हैं, वैकुंठ गया यार।
1: और यहां से गए तो इसका क्या मीनिंग होता है?
2: ब्रह्मरंध्र तो ये है फिर योगी है, जो कहते हैं ना जिसने आत्म शरीर से ही योग सिद्धि प्राप्त करी। हमारे स्कॉन के शिला प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, दूसरे ग्रह पर जा सकता है योगी अपने ब्रह्मरंध्र को छिद्र को इसे क्रैक करता है यहां से आत्मा, देन ही कैन गो टू डिजायर्ड प्लैनेट।
1: अब हमने लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ समझ लिया, डेथ इंसान की हो गई, कई प्रकार की डेथ्स होती है, हर टाइप्स ऑफ डेथ के बारे में मुझे बताइए और उनका आफ्टर लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि बहुत कि बच्चों की डेथ हो जाती है कभी बहुत छोटे, राइट, कभी स्टिल बॉर्न होता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, स्टिल बर्थ हो गया, बहुत छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, सुइसाइड हो जाते हैं। मैंने काफ़ी देखा है प्रभु जी की 28 और 32 के बीच में, हम जो एस्ट्रोलॉजिकल में सैटर्न रिटर्न बोलते हैं उस टाइम में मैंने देखा है बहुत लोगों की डेथ होती है। फिर एक तो होता है कि एक्सीडेंट हो गया, अननेचुरल डेथ हो गई, फिर एक होता है हमने 84 इयर्स क्रॉस कर लिया, जो योगिक शास्त्र में बोला जाता है 84 इयर्स के बाद आपका कार्मिक स्ट्रक्चर थोड़ा डिसमेंटल होना चालू हो जाता है बिकॉज आपने 1008 मून्स देख लिए होते हैं आपकी बॉडी ने। फिर होता है कि मैं 100 साल 90 नेचुरली जा रहा हूं, जो भी अब जैसे मुझे याद है मेरे दादाजी 2020 में गए थे एट द एज ऑफ 100 और 101, वो ना जाने से पहले बोलते थे वो रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, योगी नहीं थे वो, मिलिट्री पर्सन थे, ऐसे बोलते रहते थे वो। तो इन अलग अलग डेथ्स में क्या क्या आउटकम्स होते हैं मुझे बताइए।
2: तो इसमें क्या है कि हमको ये समझना चाहिए जिसकी जितनी ज्यादा लंबी डेथ हुई है तो लोगों की दृष्टि से उसने उतना अच्छा जीवन जिया है, पर कार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके सबसे लंबा कार्मिक साइकिल पेंडिंग था, उसको 100 साल तक जीना पड़ा क्योंकि उसके 100 साल का कार्मिक रिएक्शन पेंडिंग था। कोई बच्चा गुजर गया वोम के अंदर ही, उसको 3 महीने का दंड मिला था संसार में जाने का, 3 महीने बाद उसकी मुक्ति हो गई, लिबरेटेड सोल। 10 साल का बच्चा था, आया 10 साल में लिबरेट हो गया।
1: हाउ कैन अननेचुरली भी चले जाता है,
2: अननेचुरली भी चला जाता है, एक्सीडेंटली चला जाता है, उसको उतना ही काल था। उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ महाभारत, अभिमन्यु डाइड एट 16 ईयर्स ऑफ एज, जबकि द्वापर युग में व्यक्ति की आयु 1000 ईयर होती थी। भीष्म पितामह वाज 350 ईयर्स, अर्जुन वाज 150 ईयर्स, कृष्णा वाज 100 ईयर्स, युधिष्ठिर वगैरह 100 इयर्स एंड अबव थे, तो इस तरह से सबकी आयु बड़ी बड़ी थी। द यंगेस्ट वाज अभिमन्यु 16 इयर्स, और वो इतना शक्तिशाली था, उसने माँ की गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान पूर्ण ले लिया था। तो जब माँ की गर्भ में बच्चा आता है जीवात्मा, उसके सबसे पहले जो बनते हैं वो ईयर्स बनते हैं। इसलिए वैदिक काल में हम लोग बताते हैं कि जो गर्भवती स्त्री है उसको अधिक से अधिक शास्त्र सुनने चाहिए, पढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आई से नहीं आपके बच्चे को ज्ञान मिल रहा, कान से मिलेगा, क्योंकि वो सुनने की उसकी क्रिया चालू हो गई है। तो अभिमन्यु को अर्जुन ने पूरा चक्रव्यूह का ज्ञान सुनाया, एंट्रिंग का, एग्जिट का बता रहे थे तो सो गई, तो उसके कान जब इधर बंद हो गए तो उधर भी बंद हो गए, तो निकलना नहीं जाना, तो बाय दी कार्मिक रिएक्शन उसको डाल दिया गया चक्रव्यूह में, जाओ जाओ जाओ। जब डाल दिया चक्रव्यूह में, बाहर नहीं निकला, तो अनेक अधिरथी और महारथियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। अब अर्जुन का पुत्र जहां कृष्ण ही सारथी बने हैं, उनके सामने ही बच्चा मर रहा है, तो अर्जुन पलट कर पूछ सकते कि गीता हमको सुनाई और कष्ट भी हमको ही दे दिया, ऐसे आपके संग होने का क्या फायदा। बिकॉज अर्जुन वाज निष्काम भक्त, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया गॉड के ऊपर, भगवान पे, उल्टा उन्होंने एक्सेप्ट किया उस डेथ को। तो भगवान ने उनको इस बात को रिवील किया, अर्जुन डोंट वरी, तुम्हारा कोई पुत्र जल्दी नहीं मरा है, ये पुत्र तुम्हारा था ही नहीं। कौन था? जब मैं अपनी लीलाओं को करने के लिए द्वापर युग में आ रहा था, तो सभी देवताओं से मैंने एक लेटर डाला कि सब अपने अपने पार्टिसिपेंट करने के लिए मेरे इस क्रिया में आ जाओ। तो अलग अलग लोगों से सारे लोग मेरे इस लीला के अंदर सहयोग करने के लिए आए। तो चंद्रमा जो था मून, उसके पुत्र की वो मैंने बोला कि तुम भी आओ, तो चंद्रमा बोला कि मुझे अपने पुत्र से बड़ा प्रेम है प्रभु, इसको लीला में मत लाइए, क्योंकि लीला में गया तो द्वापर युग की लीला हजारों वर्षों की होती है, तो मेरे को बहुत इतना दिन में रह नहीं पाऊंगा पुत्र के बिना। तो भगवान बोले इसको भेज दो, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा मेरी लीला में पार्ट करना, बिकॉज आई एम गॉड एंड एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट, बट मैं कुछ ऐसी लीला करूंगा ही विल कम बैक अर्ली। तो जब अभिमन्यु को मारा तो मून तो खुश हो रहा है कि चंद्रदेव को तो उनके पुत्र मिल रहे हैं, और यहां पर लग रहा है अर्जुन दुखी हो रहा है, क्योंकि ये तो ड्रीम वर्ल्ड है ना, यहां पर तो हम कुछ दिनों की लीला करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा एटर्नल तो ऊपर है ना, तो ये जो कंसेप्ट नहीं समझते उनको रियल अभी लगता है इंपैक्टफुल। अरे 3 महीने का बच्चा मर गया, 10 साल का मर गया, अरे क्या पता वो जिसने प्रार्थना करी प्रभु से कि मेरे पास ये देवता आ जाए वापस, तो वो देवता प्रसन्न हो रहा ना, उसका पुत्र जल्दी आ गया, किसी दंड से 10 साल के लिए आया था।
1: और वो इंसान का कर्म भी कम होता है,
2: बिल्कुल ऑब्वियसली, कोई 80 साल जीरो से लंबा कर्म। एक और सुंदर सी बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना, दीर्घायु भव,
1: आयुष्मान
2: भव, तो एक व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद मिलते थे, तो उसने अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मुझे हमेशा दीर्घायु भवा कहते हैं, आयुष्मान भवा कहते हैं, गुरुजी मैं चाहता हूं मैं लंबी आयु जीऊं, पर चिंता मत करो तुम इस शरीर में अमर रहोगे, 300, 350, 400 जितने साल तक तुम्हें इच्छा मृत्यु है, जब चाहोगे तभी मरोगे। जैसे भीष्म पितामह को भी था इच्छा मृत्यु का वरदान, तो 56 डेज तक तीरों की सयावे पड़े रहे, खून खत्मापत हो चुका है, लेकिन वो मर नहीं रहे, बिकॉज उनको पावर है इच्छा मृत्यु, तो उसको भी मिल गई। अब मिल गई तो वो ऊपर के पहाड़ों, ऋषिकेश से भी ऊपर चला गया, स्वर्ग रोहिणी से भी ऊपर, सितोपंत से भी ऊपर चला गया, तो वहां एक कुंड था, उस कुंड का जल पी लो तो अमर हो जाओगे। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला तुम्हारी योगी क्रियाएं सारी पूर्ण हो चुकी हैं, बस तुमको सितोपंत जाके उस गुफा में इतना जल पीना तो तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम मरोगे नहीं। कहा ठीक है गुरुजी, मेरी सारी क्रिया पूर्ण हुआ। तो ही वॉज वेरी यंग, 50-60 ईयर्स का ही था, चढ़ता रहा पहाड़ों पर, चढ़ा पहुंच गया सतोपंत, पहुंचा तो 50-60 साल का, इतना यंग भी नहीं था, मिडिल एजेड था, मेहनत करके पहुंचा और जल पीने लगा तो एक आवाज आई, रुक जाओ मत पीना। तो देखा कौन बोला, तो देखा कि एक आदमी की आई बॉल्स लटक रही है ऐसे, शरीर के ऊपर से चमड़ी स्किन हट चुकी है, सिर्फ रिब केज है, बैकबोन है, थोड़ा थोड़ा फ्लैश कहीं कहीं चिपका हुआ है और लगभग खत्म हो चुका है। मत पीना। तो ना क्यों? बोले कौन सा काल चल रहा है? रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी तो त्रेता युग में आए थे, रामचंद्र जी चले गए, फिर कृष्ण भगवान का द्वापर युग चला गया, अब तो कलयुग चल रहा है। अच्छा कितने लाख साल बीत गए? लगभग त्रेता युग से 20 लाख वर्ष बीत गए। अच्छा तो बोले फिर आप कौन है? बोले मैं रामचंद्र जी के युग में मैंने इस कुंड का जल पी लिया था, तो जल पीने से क्या हुआ, मेरी आत्मा इस शरीर से अटैच हो गई, लेकिन शरीर तो अपनी डेफिशिएंसी में जा रहा है ना, हड्डियां भी गल रही है, कैल्शियम भी रिड्यूस हो रहा है, खाल भी गल रही है, आई बॉल भी निकल गए, लेकिन मर नहीं रहा हूं। तो कितना लंबा कार्मिक रिएक्शन मिल गया उसको। कभी कभी दीर्घायु दुखदायी भी होती है, इसके दीर्घायु नहीं उत्तम आशीर्वाद नहीं है। आप दीर्घायु तो बोल दिए, लेकिन कोई 100 साल पर बेड रिडन पड़ा हुआ है, यूरिन पास हो रहा है, घर वाले कह रहे हैं मर जाए, और वो आदमी दुखी हो रहा है कि मैं मरता क्यों नहीं, जैसे आपने कहा मुझे वे क्यों नहीं मिल रहा है, रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति बोल रहे होते हैं बुजुर्ग लोग, लगता है यमराज हमारा भूल ही गया एड्रेस। सो इट्स लाइक दैट। तो उस स्थिति में आशीर्वाद देना चाहिए, तुम्हारी मति जो है वो भगवान में लगे। तो हम लोग बोलते हैं कृष्णेर मति रस, तुम्हारी मति भगवान में लग जाए। तो अभी हम डेथ वाले अगर पार्ट को समझें, तो शरीर से जब मृत्यु हुई हमने सिम्टम सुन लिए, अब व्यक्ति की जब मृत्यु हुई तो उसके 3 यमदूतों ने निकालकर उसको शरीर से बाहर खड़ा कर दिया। अब घर वालों को लगा कि डेथ हो गई, हॉस्पिटल में हो, एक्सीडेंट में हो, सुसाइड से हो, या जैसे भी हो, शरीर छूट गया, आत्मा बाहर आ गई।
1: यमदूत पक्का आएंगे,
2: यमदूत पक्का आएंगे जब व्यक्ति नेगेटिव सोल होगा।
1: अच्छा।
2: और देवदूत आएंगे जब पॉजिटिव सोल होगा, और अगर डिवोटी होगा तो विष्णु दूत आएंगे। तो 3 प्रकार के दूत बताए गए, मैसेंजर्स, यम, देव,
1: विष्णु।
2: ऐसे 3 लोक भी हैं। देवदूत जो है ले जाएंगे स्वर्ग लोक, विष्णु दूत ले जाएंगे वैकुंठ लोक, और यमदूत ले जाएंगे नरक लोक। डिस्टेंस वही है, पर जाने का मेथड अलग अलग हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर कर्मास। तो अब जैसे शरीर से आत्मा बाहर निकली, तो व्यक्ति के सर परिवार वालों ने फोन करने शुरू कर दिया कि भाई मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। तो सारा परिवार इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब उस जीवात्मा को बड़ा कष्ट हो रहा है कि उसका शरीर जो है वो पड़ा हुआ है, और वो उसमें दोबारा री एंटर नहीं कर पा रहा। वो चाह रहा है, लेकिन अब वो उसके बाद इतनी शक्ति नहीं कि वो दोबारा उसमें रिवाइव कर सके। तो उसके आसपास घूमता रहता है अपनी बॉडी के, अपना हाथ देख रहा है, अपना पैर देख रहा है, अपना मुंह देख रहा है, बार बार कह रहा है, अपनी बॉडी को छू रहा है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा। हम लोग तो रो रहे हैं कि ये तो यहाँ पड़ा हुआ है।
1: हर इंसान ऐसे कर रहा है,
2: हर इंसान,
1: जो इंसान अटैच्ड है वही कर रहा है।
2: कौन सा अटैच नहीं है?
1: जो जिसे साधना कर रही हो।
2: साधना तो छोड़ देना, डिवोशनल पार्ट हटा दीजिए। पायस करने वाला और इम्पायस करने वाला, हर आदमी अपनी बॉडी से अटैच्ड है। पुण्य कर्म करते भी क्यों है? धर्म करते हैं ताकि अर्थ मिले। अर्थ मिलता है तो उससे क्या करते हैं? अपने काम इच्छा पूर्वी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करते ही इसीलिए है कि अर्थ मिले।
1: करेक्ट।
2: मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे, नहीं करी तो नहीं बांटेंगे। तो ये जो पूजा कर रहे हैं, इसका पर्पज ही है टू गेट समथिंग। तो जो गेट समथिंग है, तो यानी मैं अपनी बॉडी में सकुशल स्वस्थ रहूं, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो स्वस्थ है यानी उसको शरीर से अटैचमेंट। शरीर से नहीं होगा तो अपने परिवार से होगा। मेरे बच्चे, मेरे डिसाइपल्स, किसी ना किसी से अटैचमेंट है। अब उनको देखता रहता है। तो परिवार के लोग उस बॉडी को ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करके ले गए, क्रिमिनेशन। अब वो अपनी ही बॉडी की छाती पर बैठेगा और बोलेगा कि तुम मत जलाओ इसको, मैंने इतने साल इसको प्रिपेयर किया, पता नहीं कितने क्रीम पाउडर लोरेल वोरेल सब लगाए, और अभी तुम इसको जला दोगे, ऐसे मत करो बेटा, मैंने तुमको शिक्षा ली। कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि वो सोल के साथ कनेक्शन नहीं है उनका कोई। वो तो शब्द सुनते थे मुंह से निकलने वाले, आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। तो दैट इज अ ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। अब वो उसको ले गए, आत्मा के शरीर को जला दिया, अस्थि विसर्जन कर दिया। तो पिंडदान किए जाते हैं वहां पर जब किसी की मृत्यु हो, तो 5 पिंडदान उसी समय करने चाहिए जब उसकी मृत्यु हो जाए। पिंडदान क्या होता है? कुछ आटा लेते हैं और कुछ सीसम सीड्स लेते हैं, तिल लेते हैं, तिल और आटे को मिक्स करते हैं और उस व्यक्ति के नाम लेकर के दान करते हैं कि हमारी ओर से हाथ के लिए, पैर के लिए दिया जाता है। अगर ये दान नहीं किए जाए तो 13 दिन बाद जब वो आत्मा को जाना होगा टू यम लोका, तो उसके पास कोई बॉडी नहीं होगी। उस शरीर का नाम होता है अतिवाहक शरीर। अतिवाहक यानी वेरी हाई स्पीड में चलने वाली बॉडी होती है, और वो ट्रांसपेरेंट होती है, लाइक अ मिरर बॉक्स निकाल के ग्लास विंडो में डाल दिया जाए। तो जैसे आपने कपड़ा पहना है, आप लिविंग बॉडी हो, और वही डमी को पहना दो, उसका भी एक शरीर है लेडी का, वो डमी है। तो जैसे आपके ऊपर ये शरीर है, ऐसे ही एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, दिखने में ग्लास जैसा शरीर होता है, पर यहां से निकल जाए तो आपको दिखेगा नहीं। अब वो अतिवाहक शरीर बैठा है पेड़ के ऊपर, घर के ऊपर, सब जगह सेटल हो गया। अब वो समझ गया कि परिवार वाले अब मुझे नहीं स्वीकार। 13 दिन तक गरुण पुराण पड़ी जाती है ताकि उसके कर्मों को सुनकर के, वो सोल सुनकर के समझे उसने क्या किया, और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको स्वीकार कर ले। गीता के पाठ किए जाते हैं ताकि वो समझे कि सच में मृत्यु होती है, तू मर चुका है, अब तुझे शरीर नहीं मिलेगा वापस। तो डिटैचमेंट परिवार का होना हो, उस आत्मा के लिए डिटैचमेंट के लिए गरुण पुराण का पाठ बताया गया। लोग सोचते हमारे लिए, लोग तो सुन ही नहीं रहे होते। कोई खाना बना रहा है, कोई रिसेप्शन कर रहा है, कोई किसी फैमिली मेंबर से मिल रहा है, पंडित जी अपना गरुण पुराण रिचुअल कर रहे हैं, पर हो किसके लिए रहा है? वो आत्मा बैठकर सुन रही होती, सुनाओ, अच्छा ये कर्म का ये मिलेगा मुझे, इस कर्म का ये मिलेगा, पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुमने सुना? पहले पढ़ा कभी? ग्रंथ तो इतने सालों से खोला कभी? फिर बैठकर वो रोता रहता है। 13वां दिन जैसे ही आया, यमदूत फिर आएंगे, कहेंगे 13 दिन हो गए, क्लीन सब कुछ, प्रीति भोज हो रहा है, सब लोगों का भोजन हो रहा है, सबने भोजन खा लिया, घर की शुद्धि हो गई, क्लीनिंग हो गई, आत्मा की यात्रा प्रारंभ हो गई। अब आत्मा जब चलना शुरू करती है, 3 यमदूत उसको लेकर के ट्रेवल करेंगे। तो इस पूरी यात्रा में 16 स्टेशंस गरुण पुराण में बताए गए हैं, 16 स्टेशन आएंगे। तो लगभग ये जो डिस्टेंस बताया गया, 86,000 योजन, 12 किलोमीटर के यूनिट को वन योजन, तो ऐसे 86,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना एक साल के अंदर आत्मा को, उस ग्लास बॉडी के अंदर, ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर। तभी एक गाना आता था ना, ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। अब जैसे ही डेड बॉडी हुई, क्रिमिनेशन हुआ, आकर के मुंडन किया बच्चों ने, लड़कों ने मुंडन किया जिन्होंने आग लगाई, मुंडन हुआ तो जो ये बाल है ना, इस बाल को छाता बना के उस सोल के ऊपर लगा दिया गया, आत्मा के उस ग्लास बॉडी के ऊपर वो लगा दिया छाता। बोले तुम्हारे पुत्र ने, तुम्हारे लिए पुत्र ने, या तुम्हारी बेटी के पुत्र ने, या परिवारजनों ने ये बाल दिए तुम्हारे लिए, तो उसको एक जगह पेस्ट करके यम के दूध लगा देंगे, छाता आ गया। 247 योजन उसको डेली चलना है, और 348 डेज में यात्रा पूर्ण होगी, यम लोक के गेट पर पहुंचेगी। यम लोक के बाहर एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी। वैतरणी नदी के अंदर जल भरा हुआ है, वो जल जीवात्मा को अगर पायस कर्म करके गया होगा, तो अभी मैं पायस अनपायस तीनों का सारा बताऊंगा, पहले वैतरणी बता रहा हूं। वैतरणी के उस पार यम का लोक है जिसका नाम है संयमपुरी लोक। जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, मैं पूरा बोलूंगा नहीं क्योंकि उसको बोलना नहीं चाहिए, उच्चारण करना नहीं चाहिए, मन में करना चाहिए, सिर्फ तीन शब्द बोल रहा हूं, ओम भू भुव स्वाहा। तो भू का मतलब है भूलोक, भुव का मतलब है ऊपर एक लोक है संयमपुरी लोक, और स्वा का मतलब है स्वर्ग लोक। तो तीन लोगों की चर्चा इस मंत्र में हुई है, क्योंकि ज्यादातर लोग स्वर्ग जाने की कामना करते, स्वर्ग लोकवासी हो गए। भुव लोक इज अ स्टेशन वेयर डिसीजन इज बीन मेड, दैट इज जजमेंट डे स्टेशन प्लेस, जहां पर जजमेंट होगा, कार्मिक रिएक्शन जो भी कर्म किए हैं, तो उसको भुव लोक कहते हैं, और हम जिधर रहते हैं उसको भू लोक कहते हैं, अर्थ प्लैनेट। तो भू से भुव लोक की यात्रा हो जाएगी आपकी 348 डेज में। वैतरणी नदी पार करके आप यम लोक, भुव लोक पहुंचेंगे, जिसको संयमपुरी नाम भी उसका दिया गया, एड्रेस संयमपुरी लोक। वहां पर यमराज, चित्रगुप्त, यमदूत सब बैठे हुए हैं। अब दोबारा से शुरू करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया यहां डेस्टिनेशन है, जहां जजमेंट होगा। एक आदमी जिसने पूरा जीवन पाप किए, नॉनवेज खाया, एल्कोहल पिया, परस्त्री संग किया, झूठ बोला, भगवान का कभी स्मरण नहीं किया, चीटिंग प्रोपेंसिटी करी, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, जिसके लिए वो चीटिंग से जीतना चाहा, गेम्स, ये अपना समय मेटेरियल वर्ल्ड में अधिक लगाया, आसक्त रहा संसार में, कभी भगवान के ईश्वर का स्मरण नहीं किया, कभी कोई योगिक क्रिया नहीं करी, कभी वैदिक ग्रंथ नहीं पढ़े, ऐसा जो कार्मिक गंदा आदमी है, वो जब शरीर से निकलेगा तो यम के दूत अपने हाथ में दंड और पाश हंटर रखते हैं, और कुछ यमदूतों के हाथ में मुदगर होते हैं, बड़े वाले वो जो पहलवान लोग नहीं लेते, ऐसे घुमाते हैं गदा टाइप का, वो मुदगर कहलाता है, उनसे उसको दंड देते हैं, मारते हैं। वो चीखता है कि मार क्यों रहे, कर जब शरीर था तुमने क्या कर्म किए, अब चलो। अच्छा, परिवार को एजुकेशन नहीं दी तो परिवार ने उसके लिए ना तो मुंडन किया,
1: ये भी हो रहा है आजकल, मुंडन होता ही नहीं आजकल,
2: तो पिताजी को छाया नहीं है, छाया नहीं है, चप्पल दान नहीं किया तो पिताजी को चप्पलें नहीं है, अब वो आतिवाहक शरीर पिंड दान नहीं किया तो शरीर नहीं है, अब शरीर नहीं है, छाता नहीं है, चप्पल नहीं है, तो वो जीवात्मा जो इतनी सूक्ष्म थी उसको एक शरीर देते हैं, यातना शरीर। जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, 84 लाख योनि बोलते हैं, उन 84 लाख में कुछ योनियों के नाम मैं बता रहा हूं आपको, अतिवाहक, देव योनि, और एक है यातना शरीर, जो कि नर्क में रहेगा ना, तो यातना शरीर। लोग बोलते हैं ना, जब शरीर यहां छूट गया तो कष्ट किसको मिलेगा, आत्मा तो छोटी होती है, एक बॉडी मिलती है उसका नाम है यातना, पनिशमेंट बॉडी, यातना शरीर
1: सबको मिलती है,
2: सबको मिलेगी जिसको भी ले जाना होगा। जैसे जेल जाते हो तो वो धारी वाला कपड़ा नहीं पहनाते हैं, सबको मिलता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, कर्म के अकॉर्डिंगली मिल रहा है, नॉट बाय योर प्रोफेशन। तो जैसे आपने कर्म बुरे किए थे, यमदूत ले गए, परिवार वालों ने कोई पिंडदान नहीं किया, कोई छाता नहीं, कोई चप्पल नहीं, यातना शरीर में खींचा जा रहा है। 16 स्टेशन, सौरीपुर, नगेंद्रपुर, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, शीतढायपुर, अतितीव्रपुर, ऐसे 16 स्टेशन है। इन स्टेशन पर हर 21 दिन बाद यात्रा जाकर रुकेगी, लगभग 20 से 25 दिन के अंदर यात्रा पहुंचती है। इसलिए बोलते हैं जब किसी की डेथ होती है, मावस का भोजन निकालो, अमावस्या का भोजन निकालो, या तिथि पर ब्राह्मण भोजन कराओ, गऊ को भोजन कराओ। जो भी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ दिया, उसके परिवार में 11 महीने तक उसको हर महीने का भोजन निकालना होता है, एक प्लेट बनेगी, भोजन निकलेगा, गाय को खिलाओ या ब्राह्मण को, आपके ऊपर है, वो भोजन उसको वहां मिलेगा स्टेशन पर। ये नहीं किया, वो भोजन भी नहीं मिल रहा, भूखा चल रही है आत्मा। अच्छा, यातना शरीर में एक बड़ी डिफिकल्टी क्या है, इस बॉडी में पेन होता है तो आदमी मर सकता है, शरीर छूट सकता है, यातना में छूटता नहीं है, दंड मिलेगा, कष्ट होगा, लेकिन मर नहीं सकता क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी
1: नहीं, सकता भाग नहीं सकता,
2: कुछ नहीं कर सकता,
1: अब वो चल नहीं सकता,
2: मर ही नहीं सकता। अब वो चल रहा है, दंड खा रहा है, दंड खा रहा है, दंड खा रहा है। 16 स्टेशन, अतिशी ढायपुर पे हैवी बर्फ पड़ रही है, ठंड लग रही है, कंबल दान नहीं किए हुए, कंबल नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे कष्ट लेता हुआ, पिटता हुआ, 16 स्टेशन पार करता हुआ 11 महीने बाद आत्मा पहुंची उस नदी, वैतरणी नदी के, वैतरणी का मतलब है, वै मतलब ट्रुथ, तरणी मतलब टू क्रॉस ओवर, तो क्रॉस ओवर द ट्रुथ। तो वहां एक गाय, काऊ खड़ी होती, गाय, गाय से पूछा जाता है ये दंडनीय व्यक्ति है, इसको पनिशमेंट मिलना है, क्या करें, इसने कभी गाय दान नहीं दिया, गाय सेवा भी नहीं करी, इवन गाय का फ्लैश खाया, मीट खाया इसने, ओहो इसको पूछ पकड़वा दो। तो पूछ पकड़ता गाय की, तो वो जो नदी है वैतरणी, वो कैसी दिखती है उसको, पूरा उसमें पस पी ब्लड, पूरा गंदी नदी है, उसमें से ऐसे पकड़ करके उस पार ले जाया जाएगा, मुंह पर उसके पीप लग रहा है, पस लग रहा है, ब्लड लग रहा है, पीता खाता उसको रिक्रॉस करके, और उस नदी का डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर बाद उस पर पहुंचा, यमराज बैठे हैं, लाइन लगी हुई है लोगों की, यमदूत खड़े हुए, सब खड़े हुए हैं, चित्रगुप्त पढ़ो, क्या तुम ये जीवात्मा थे, इस शरीर से आए हो, जी हाँ, तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, मेरे पास शिक्षा ही नहीं थी, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, शिक्षा नहीं तो लेनी चाहिए थी, तुमने एजुकेशन के लिए शिक्षा थी, इंजीनियरिंग के लिए, बिजनेस के लिए, खाने के लिए, होटल के लिए, ग्रंथ के लिए शिक्षा नहीं थी। यमराज बोलते अब क्या किया जाए इसका, चित्रगुप्त बोले महाराज इसको दंड मिलना चाहिए। तो यमराज उसको भयानक रूप में दिखाई देते हैं, बड़े सींग, बड़े खतरनाक, एकदम ऐसे मार देंगे, एकदम लाल लाल आंखें, ब्लैक बॉडी, पूरा शरीर में दंड ले रखे हैं, और एक हंटर मारते हैं उसको, जीवात्मा रोती चिंगारती लेकिन कुछ नहीं, कहां भेजे इसको, नरक लोक में। तो नरक लोक भुव लोक से साउथ डायरेक्शन में है, इसलिए जब भी डेथ होती है तो क्रिमिनेशन ग्राउंड में सब लोग यही चेक करते रहते हैं,
1: सिरका है,
2: सिरका है,
1: अच्छा इसलिए करते हैं,
2: नर के दिन साउथ डायरेक्शन,
1: अच्छा,
2: तो साउथ में सिर रखते हैं, लेकिन जो उसकी दृष्टि है वो साउथ में नहीं पड़नी चाहिए, जीवात्मा की आंखें जो है वो साउथ की तरफ नहीं होनी चाहिए, सिर साउथ को हो सकता है, तो साउथ की तरफ सिर करके रखना चाहिए। अब उन्होंने क्रिमिनेशन हो गया, सब हो गया, आत्मा वहां पहुंच गई, अब नर्क लोक में ट्रेनिंग दी जाएगी,
1: ट्रेनिंग
2: क्या है, क्योंकि जब संसार में भी तो दुख भोगने आएगा ना, तो जेल का नाम है सुधार ग्रह, प्यूरिफिकेटरी, रिफॉर्मेशन, तो रिफॉर्म करना है, नॉट टू पनिश करके दंड देके हड्डी पसली तोड़ के ऐसे थोड़ी, ट्रेनिंग देनी है। अब उस जीवात्मा के कर्म ऐसे हैं कि उसको पशु योनि में जाना है, जो मैं बोल रहा था राजा भरत, राजा को हिरण बनना था, तो ऐसा थोड़ी कि राजा मरा तुरंत हिरण बन गया, उसको हिरण बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमको अगर पिग बनना है नेक्स्ट लाइफ में, तो एक आदमी जो एसी में बैठा है, बढ़िया फूड खा रहा है, एंड नेक्स्ट लाइफ में वांट टू बी अ पिग, तो कैसे बनेगा, उसकी ट्रेनिंग के बिना धूप में रहना, वो वैसी आवाज निकालना, वो कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग कैसी है।
0: तो आप सुन रहे थे गरुड़ पुराण पर आधारित श्लोक जी के द्वारा प्रशांत मुकुंद प्रभु के इंटरव्यू का पहला भाग, और अब आप सभी की सेवा में कुछ भजन कीर्तन।

भाजपा द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं, हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व नेंडी संगम कॉलेज फिजी के वाइस प्रिंसिपल और इंडियन सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन के प्रधान तथा ब्रिस्बेन के संजय सुमेर और अजने सुमेर के पिता तथा चंद्रा सुमेर के पति ब्रिस्बेन के मास्टर राम सुमेर के निधन शुक्रवार 24 जुलाई रात 11:35 पर पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 1 अगस्त सुबह 9:30 से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन्स एंड क्रेमेटोरियम 329 होलैंड पार्क ब्रिस्बेन में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप रजने सुमेर जी को 0411-027-801 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.